0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: मेरी किसी बात को नहीं डालते, उनके फौरन साथ ही मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी।
2: क्या बता दूंगी?
1: मैंने तुझे किया

0: morning, Mr. Johan.
1: Good morning.
0: Rahul. Hi. नौकर ने खून किया, नौकर ने खून किया, आओ.
1: ए, अरे रे रे रे, वो देखो. Hi guys.
0: आओ. Hi.
1: कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल टीना जैसी ना.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.